हर जियो हर जियो। मेरी कले कले नो बेनती जे मसा सचे पातशाह को बहने हर कीर्तन विच ये मन नू कहना चाहिए भी पता नहीं अगला समा आऊगा कि नहीं आऊगा, अगला पल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, शायद ही ये लास्ट कीर्तन ही हो। जदों भी कीर्तन बंदा करे पूर्ण तौर पर समर्पित होने की कोशिश कर सकता है, बाकी नदर की गल है। तो कले कले जिन्हों जुबान मिली है ना बोल सकते हैं, एक बहाना तो लथ गया ना भी समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, सामने स्क्रीन लगी है सब कुछ आ रहा। मेरे ख्याल नाल मैं तो विखाई पैंदी नहीं, अर्थ भी आ रहे होंगे। बहुत प्यारे प्यारे शब्द ने जिहड़े साडी जिंदगी है, ये प्रैक्टिकल ता ही वरतेगा जे असी समर्पित होके अपने सारे ज्ञान इंद्रिय इस बाणी दे विच जदों समर्पण कर देंगे उदों इन्हां दी अवस्था बन जाए। जदों ये गावी है सुनी है मन रखिए पाओ, पहला तो गाना ही है, गावत गावत परम गत पाई और टुट के गाना, जिवें भूखे खावत लाज ना आया, भूखे नूं रोटी मिल जी ना, हुण सारे दिन ते तड़प तड़प के आए हैं महाराज रोटी मिली है, भूखे खावत लाज ना आवै तो हर जन हर गुण गावे। हुण इत्थे लाज लाज छोड़ हर के गुण गा, इत्थे छड़ के सब कुछ गाउण लग पैंदा उच्ची उच्ची। क्यों गाउंदा है? ये कोई कलाकारी थोड़ी ना, ये गाउणा रोना है अपने गुरु अगे कि मैनू बख्श लै, मैनू बख्श लै। बहुत प्यारा शब्द है, मेरे नाल गाओगे तो गाया जाना वरना रह जाना। कई मेरी शब्द पूरा हो जाता है, रसना तो पूरा हो जाता, सुरती करके एक लाइन भी नहीं गाई जाती, तो कई बार सुरत पकड़ लवे तो और तो छड़ी नहीं जाती। दया दया कर राखो हर जियो हर जियो, पहला गालो फिर अस शुरू करांगे।

संगत जी, अं सोच रहे कि इतिहास की लड़ी शुरू करिए कि गुरबाणी की करिए। बच्चों लेकर दर्शन मेले कर लिए, बच्चे तो सियाणिया उम्र के हैं, संथिया करन वाले हैं। जो सानू पता लगा है कि बच्चे सियाने हैं, संथिया करन वाले हैं, गुरबाणी नू पढ़न वाले हैं। साखी भी गल करते हैं पर गुरबाणी शब्द भी आप जी के सामने आ जाएगा। शब्द आप जी ने पहला पढ़े भी होंगे, अज कोशिश करांगे उन्हां नूं थोड़ा जिहा होर फील किया जाए। सो सारे धियां पुत्रां दे चरणों च भी बेनती है, आप जी ने भी अपना फोकस बना के रखना। संगत जी, गुरबाणी पढ़ना यह पहला स्टैप है सतगुर प्यारे जी के दर्शन करन दा। क्योंकि जो अरदास विच भी आपां पढ़दे हां ना, आपां उदां प्रेम सहित कह दिंदे हां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी, इदा कहने हैं। पर उत्थे लिखिया की होया भला, अरदास दे विच की लिखिया होया है? उत्थे दर्शन नहीं लिखिया होया, उत्थे लिखिया पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। असल विच दीदार दा मतलब ही दर्शन हुंदा है, ठीक है जी। दीदार लफ्ज़ जिहड़ा ये आम साढ़े पंजाबी च शायद अहीं इन्ना नहीं समझ सकते, तां ही अक्सर जिहड़े अपने गुणी जन हन जां गुरमुख प्यारे और अरदास करदे कह दिंदे हन पाठ दर्शन दीदार, कि संगत उस चीज़ नूं फील कर सके। अच्छा, सब तो इंपोर्टेंट फीलिंग ही हुंदी है इस दुनिया दे विच। दो भरा हन फीलिंग है ते भरा हन फीलिंग खत्म हो गई ते कुछ भी नहीं हन। माता पिता कोई भी रिश्तेदारी इस दुनिया दे विच फीलिंग तो ते है। अच्छा, आप जी प्यारे जी का ते सतगुर प्यारे जी का रिश्ता की है? ये भी तो फीलिंग ते ही है ना। कोई फील करता है कि कलगीधर जी मेरे पिता जी हैं, तो वो सिखी नूं तुर पैंदा है। किसी नूं वो फीलिंग उपजदी नहीं, सारी उम्र वो गुरद्वारा साहब ही आउंदा रहिंदा है ते उदां दा ही रहिंदा है। सारा कुछ फीलिंग ते हुंदा है। एक गल याद रखना, गुरबाणी की गल बच्चों नाल भी थोड़ी करते हैं। पुत्र, गुरबाणी पढ़न का तरीका महाराज जी ने जपजी साहब दे विच ही समझा दिता सी। कहिंदे गावीए सुणीए, बोलो

अच्छा पहलां जदों कल्ली पंक्ति महाराज जी ने कही तो हो सकता मन च डाउट हुंदा कि महाराज जी क्यों इन्ना टाइम है 24/7 मैं यही काम करांगा हुण, तुसीं तां कहिंदे हो वी इदां सिमर कर। जदों मैं पुछिया कि महाराज जी क्यों, तो महाराज कहिंदे जे तू इदां करेंगा ना पुत तेरे जीवन च कोई दुख नहीं रहेगा, तेरे जीवन च की होगा। ये हुण ज़्यादा ज़्यादा नहीं बाहर हो गए आपां इस गल दे। अच्छा हर बंदा चाहुंदा है दुख तो मेरा। अच्छा हुण एक प्रश्न भी पुछदे आ, आप जी ने सारी उम्र कदे अरदास कीती आ कि इत्थे कि महाराज जी मैनू दुख देवो? नहीं कीती। अच्छा कदे किते सुनी आ किते ग्रंथी साहिबान अरदास करदे होण जां तुसीं सुनी होवे कन्नां तों कोई आया होवे आण के कहिंदा महाराज जी मैनू दुख देवो? प्रश्न अगला यह है कि जे अरदास जम्मण तो लैके हुण तक साढ़े वड्डे वडेरियां दी सारियां दी सुख दी सी ते जीवन च की है, सुख है कि दुख है? फिर की मतलब बनता है? क्योंकि असी आ स्टैप पूरे कंप्लीट नहीं किए। की कहा सी? कंप्लीटनेस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनेट टू हैप्पीनैस। असी चाहते हाँ असी आईए $5-10 महाराज जी दे भेट करिए ते महाराज नूं कहिए महाराज जी कोई खेड वरता मेरे दुख सुखां च बदल जाण। जादू की नगरी दे विच डॉक्टर इदां नहीं करता। डॉक्टर को जाने तो दुख दस दें तो डॉक्टर तेनों दवाई देता है, आ दवाई है सर्व रोग का औखद नाम। महाराज कहिंदे मैं मेरी गरंटी है पुत्र तू जा तू आ दवाई खा इदां खा ते तेरे दुख दूर होणगे। ये महाराज जी की गरंटी। अच्छा अहीं इत्थे सैटिस्फाई नहीं होए, अहीं क्या महाराज जी जे अहीं 24 घंटे करांगे तो बस इन्ना ही मतलब दुख ही मिटने, बस होर कुछ नहीं, बस महाराज जी दुख ही मिटने होर कुछ नहीं? महाराज कहिंदे नहीं होर भी दवांगे बख्शांगे। की कहिंदे फिर?

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पाशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक नहीं त्याए फिर अंगद करते अमरदास संदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई चिट्ठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नानक दावत आए सत्थाई हो सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सत्थाई हो सहाय दसा पातशाही की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धरके खालसा जी बल जी हिन माणियां दे मान ताणियां दे तान न्योटन दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे जुड़ी विच सोलह सजी पाठ होए हन पोचकन दी खेवा बख्शनी अगे तो शुद्ध स्पष्ट माणी दा बल बख्शना जी आप जी दी विशाई तैयार है जी सुखासना पास विराजमान होवो जी संगतां नूं खुशियां बख्शो अखर वादा घाटा भोजक माफ करनी सरबत काज रास करने सही प्यारे में जिना मिलिया तेरा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला।

पै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काए आखो, कर्म केते पवन पाणी वैसंत्र केते कान नहेश केते बरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरंद केतिया सुरती सेवक के

लो। तथा खंडमंडल वर पण जी को कथा तयंत तथा लो लो आकार जीव जी हुकुम तिवै तिवकार वेखा वेखसा कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पावर अति दुश्मार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया सब सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिन कारु नानक नदरी नदर निहार। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिलै सगल जगतु

अपनी स्वरूप है। नमो सर्वमान्य समस्ति निदान्य नमस्त्वंग नृनाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग अगंजी नमस्त्वंग अपंजी नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राय नमो साहसाय नमो साहसाय नमो महामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञान नमो परमतान नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तम प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरप्रशन त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भान्य सर्वंग मान्य सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुक्ता सर्वंग मुक्ता सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले

गत मित अपार मुंगन उदार मुंगन प्रणाम निर्पहने काम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म।

चतुर्चक्रकर्ता चतुर्चक्रहर्ता चतुर्चक्रदाने चतुर्चक्रजाने चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रप्रति चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रकाले चतुर्चक्रपासे चतुर्चक्रवासे चतुर्चक्रमान्ये चतुर्चक्रजाने दानिये चतुर्चक्र मानिए चतुर्चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन जाय न चित्र न मित्र प्रिय पवित्र प्रति सदि सदृ सकृष भगवती संत प्रसाद कस्ते कि आओ श्री देश के आ भिज पेशा के आ गन कर्मे के आ पंच परमे के आ भिज लो कह के आ दित शोक कह के आ भूत भरने के विभूत करने के राजन प्रवाह के धर्म तो जा के आ शोक भरने के सर्वा भरने के जगत कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है के अन पहुन पे के आ दे है के आ पेवे के चित्रंग हीने के क्या दीन के रो वीर जा के रही मेरे हक है के भाग भी है भय के गैबुल गैब है के अबुल गुनाह है के सांसा है कि कारण को निंदे करो जी देहांत है कि राज करीम है कि कर्म करीम है कि सर्वमंगली है कि सर्वमंगली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र अलीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨੀ ਹੈ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਜਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਥਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮੰਕਲੀ ਮੇ ਕੇ ਪਰਮੰਖ ਹੀ ਮੇ ਕੇ ਆਕਲ ਆਲਾਮੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੇ ਕੇ ਹੁਸਨ ਉਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਰੁਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮੇ ਸਲੀ ਖਤਮ ਉਦਾਮੇ ਗਨੀ ਮੁਲ ਸੇ ਕਸਤੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸਤ ਬਿਲੰਦ ਉਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਨ ਉਲ ਤਮਾਮੇ ਰਜ਼ੂਲ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜ਼ੀਮ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀ ਜੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸੁਯੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ

नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्य गंजे अगाध्य सुपंग सर्व भाग्य सुधर्मानुराग है त्रिभुव स्वरूप है अशिज है अशूत है कि नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी शांत

सर्वहंता सर्वंगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वहर्ता सर्वकर्ता सर्वप्राणु सर्वत्राणु सर्वकर्म सर्वतर्म सर्वयोग।

अनंतम स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्व स्वाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनमे त्रिपंगी त्रिकामी नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माता न जात न पाता है निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शंतु है प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सलो सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्न अल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दयांद है कि राज कर हिंद है करीम उल कमाल है कि हुस्न उल जमाल है गरीम उल खिराज है गरीब उल निवास है हरीफ उल सिकन है हरास उल फिकन है कलंक प्रणास है समस्त उल निवास है अगंजुल गनीम है रजाए करीम है समस्त उल जुबा है कि साहिब की राह है कि नरकम प्रणास है बहिस्त उल निवास है कि सर्बुल गवन है हमेश उल अरवन है तमाम उल तमीज है समस्त उल अजीज है

सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाशी है, सर्वनाशी है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, आजपा जाप है, अथपा थाप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है,

अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे,

नमो इंद्र इंद्रे अनादम बेपुते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय भुआ जुआ नास आकाश गंज पंज लख पख काल दयाला लेख भेख नाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरग नरंगे नरूपे नरेखे करमंग भरमंग अगंजे अलेखे भुजंग पर्यावत छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे सुमस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पहुते स्वयं अब सुप

सुंदरिय पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न ते हम जो बरचा हो, सुतुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे, तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हूं जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रच्छा। राख ले हुए रख नहारे, साहिब सन सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जग मनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन ही आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मत कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिछांत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान है कट कट के पट पट की जान है जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहार

कृपा दृष्ट तन जाहिने हरि हो ताके ताप तन कमहे हरि हो रित सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई।

खड़ग के मैं शरण तिहारी आपा दैले उबारी सर्व ठौर मो ओह सहाई दुष्ट दोख तेले बचाई।

सुने गुंग जो या सुर सुन पावई सुने मूर्त तुलाए चतुरताय आवई दुख दर्द भव निकनत नर के रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्थ सहस पुन तीन कहित जय भाद्रव सुदी अष्ट।

जी ओ निर्मल बारो, निर्मल बारो तन निर्मल नियो, निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचै नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रत्न जिनी खटिया। भले सेवन जारे कह नानक, जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे होवे, तसन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय ते आए अंतरियात्मै समाले, आप छड सदा रहे परणै, गुर बिने वर ना जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।

हर रास मेरी मन बन जा रा, हर रास मेरी मन बन जा रा, सतगुर तेरा सजानी, हर हर नित जप्यो जी, ओ लाह खटे हो दिहाड़ी, ओ धन।

हर मंगल गाव सखी ग्रेह मंदर बनया। हर गाव मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापाए, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पर जापाए।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुमनी सै भंगुर प्रसाद चक्कर गौतम पीस्तु दरकूस कुन करता रखा कबीर करीब तुम भैया पर्वत का दुनिया मुकामे फानी तय की दिलदानी माम सरभु अजराय गृह तय।

कहे नाहे गुर प्रसाद नान गुण गाई ज्योति सहतो तेरा रूप अगुण निधान गोविंद अनुपा सिमर सिमर सिमर जा सोये नान कर्म प्राप्त हुई जिन जप्या तिस को बलिहार तिसके संग तरह संसार कहो नान प्रभ लोचा पूर संत जना की बाशो तूर तिलंग महला पंजमा घर तीजा मिहिरवान साहिब।

परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाए मान जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का सम्मेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए सारे पतवंत सज्जनों का तहे दिलों धन्यवाद और निघा जीव कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for being here, for blessing this lovely couple. Today it's not just a ceremony, but it's a blessing. When two souls merge into one in the presence of our eternal Guru. So Sadh Sangat Ji, as we're sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes a collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar, which means absolutely no talking, listening to the kirtan, and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Sadh Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai. अपने जो निजी विचार ने गल्लां बातां ने कृपा करके उन्हां नूं संकोचण की कृपालता करो, चुपता दान बख्शिश करो, अपनी सुरत अपना ध्यान शब्द दे विच जोड़न दा यतन करो। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दी अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही सतगुरां पासों असी अपनी झोलियां खुशियां ते खेड़ें दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी कंठ है जां बाणी पढ़ सकदे हन उन्हों के चरणों में बेनती है कि वह भी नाल गुरबाणी के गायन कर। बाकी संगत वास्ते स्क्रीन लगिया ने फॉलो कर सकते हैं जी। आओ हुण दोनों ही परिवारों की जानकारी आप जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी प्रभजोत सिंह धालीवाल, सपुत्र सरदार रविंदर सिंह धालीवाल और माता जी हरविंदर कौर धालीवाल परिवार का पिछले पिंड हंबड़ा जिला लुधियाणा पंजाब इस वक्त ये परिवार लैंगली बीसी का निवासी है। प्रभजोत सिंह दे दादा जी का नाम सरदार दलीप सिंह जी धालीवाल और दादी जी माता जसवंत कौर धालीवाल। इन्हां दे नाना जी का नाम सरदार जोगेंद्र सिंह जी गिल और नानी जी का नाम माता करमजीत कौर गिल है। सो इसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी सिमरन कौर थियाड़ा, सपुत्री सरदार हरबंस सिंह जी थियाड़ा ते माता जी मनजीत कौर थियाड़ा। परिवार का पिछले पिंड बडियाल जिला होशियारपुर पंजाब अते इस वक्त यह परिवार भी लैंगली बीसी का ही निवासी है। सिमरन कौर के दादा जी का नाम सरदार निर्मल सिंह जी थियाड़ा अते दादी जी का नाम बीबी गुरदेव कौर थियाड़ा है। इन्हां दे नाना जी सरदार हरी सिंह जी अटवाल अते नानी जी का नाम माता मोहिंदर कौर अटवाल है। सो इस दोनों ही परिवारों की संखेप रूप से जानकारी हुण आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे जो माता पिता हन वह अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के अरदास विच हाजरी लवाउणगे। बाकी सतसंग जी आप जी दे चरणां विच बेनती है कि प्रेम सहित सजे रहो। समगनास द कपल प्रभजोत सिंह सिमरन कौर एंड देयर पेरेंट्स वेयरएवर दे आर सिटिंग प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के अरदास विच हाजरी लवाउणगे। बाकी सतसंग जी सजे रहो। अरदास दी सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर, उपरंत सतगुरों के मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी ने सरवण करवाएंगे। आओ अरदास हो रही है जी, एकाग्रता बख्शिश करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पूरा थाट बनाया पूरे वेखो हो एक समाना इस परपंच मह साचे नाम की वड्याई मत को धरो गुमाना सत

संत जन हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया

मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया

नित हर हर जापे राम। मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम। जा नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापे राम। मानस जन्म हर पाइये हर रावण बेरा राम। गुरमुख मिल सुहागणी रंग होए कनेरा राम। जिनी मानस जन्म ना

गुर हर प्रभ अगम दड़ाया मन तन रंग पीना राम। भगत बछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम। बिन हर नाम दे बिन हर नाम ना जीम दे ज्यों जल बिन मीना राम। सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बलाबल महला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन बसे वड़ भाग। गुरपुरे बखालिया नानक हर लिव लाग। संत मेरा हर प्रभ रावण आइया होमे बिख जागे राम। गुरमति आप मिटाया हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल पर गसिया गुर ज्ञानी जागे राम। जा नानक

प्रेम कसाइया ज्यों बिलकस मसाई राम। गुरपुरे हर मेलिया हर रस गाई राम। जन नानक नाम बिकसिया हर हर लेवलाई राम। हम मूरख मुगध मलाया कर कृपा तारी राम। धन धन गुरु सावास है जिन होमे मारी राम। जिन बड़ भागियां बड़ भाग है।

मन की त्यागी बिनवंत नानक सारन स्वामी संत संग लिव लागी बराबर महला पांचवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बचतरा तिस धुन दर।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखा निद पियो सुख सागर प्रभ भेटिए नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर।

गोविंद के सब ईश भजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबु का स्वामी राम, रस पिन्नड़िए अपने राम संगे से लोइन नीके राम, प्रभ पेख पेखत ईशा पुनिया मिल साजन।

ना पाए, पखंड भगत ना हो वही, पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन हट कर्म कमावणे, थाए ना कोई पाए, नानक गुरमुख।

दुश्मन दूत सब मार कढिए, हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान ना लागे, दुख बिच कार कमावणी, दुख बढ़ते दुख आगे, करमी सतगुर पेटिए ता सच नाम लिव लागे, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम पौ पागे। महला तीजा, गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया, गुरमुख बेखन बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्रकाशया, तिमर अज्ञान अंधेर चकाया। महला तीजा, मनमुख मैले मरे गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भन्नत नानक सुनो जन पाई।

तुम नदर खुद का दवाई है रे राहो। बुबारे बूढ़े तुरने पैया सबू जम ले जाई है रे। मानस बुपड़ा मूसा मानस बुपड़ा मूसो कीनो मीच बलिया खइए रे। तनमंता और निर्तन मन ही ताकि कुछ न कानी रे। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे। हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा नरारी रे। आबे न जाए ना कबू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया एत जियो जिया जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतों मिले सारंग पानी रे। बलावल विद्या ना पढ़ू बाद नहीं जानो हर गुण कतद सुन।

अभे न माता सो कबू न माता, कै कबीर रामे रंग राता, बलाबल ग्रह ताज बन खंड चाह जाइए चुन खाई।

साज हम किए तिसे बजाक तिसे बसार अवर लगरी। संदक तो हे साधनी के हो सन परे तुम पगड़ी। कह कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जम की खबड़ी। बलाबल दरबा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सूरत करे को मेरी। दर्शन दीजे खोल कवाड़ रहो तुम तनी ता तुम तन तनी उदार त्यागी। सर्वनन सुनियत सो जस तुमार। मांगू कै रंक सब देखियो।

देख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कबट नित हर भज बबरे। रहो जियो तू जाचे, सो त्रिवन त्रिपवन पोगी, कै कबीर कैसो जग जोगी। बलाबल इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बसारे, किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहाँ करे बिचारे। रहो त्रिग धन त्रिग धन त्रिग हे माया, त्रिग त्रिग मत बुद्ध फुन्नी फन्नी, इस माया को

वृंदावन शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पर खोतम जाके रेख न रूप रे मन हर भज परम तजो जग जीवन राम रहो आपत कुछ न

मानो सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहो तब ए मत जो सब में पेखे कुंठल गांठ जा।

राम। कबू जीड़ा उब चढ़त है कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहत है चारे कुंडा पाले। मन लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप न माई, परमट नानक जे तू देवे अंते हुई सुखाई। राम करी मैला पहला सर्व जो तेरी पसर रही, जा जा देखा तै नर हरी। जीवन तल बनवार स्वामी, अंध कुप माया मन गाड्यो, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहा। जय पीतर कट पीतर बसिया बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर, आपे सर्व रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जा देखा तै रहा समाए। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लाग सुबाणी, परमत नानक दासन दासा प्रताप है गा प्राणी। राम करी मैला पहला जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा पीत दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी सुधर कोई आए कहे। किन विद सागर तरिया जीव त्यान मरिए रहा, दुख रवाजा रोह रखवाला आसन देसा दो पट जड़े। माया जल खाई पानी कर बांधिया, सत के आसन पुरख रहे। किंते नामा अंत न जानिया तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने आप करे। जब आसन देसा तब ही क्यों कर एक कहे, आसा पितर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इमिर सागर तरिए जीव त्या उमरिए रहा, दूजा राम करी मैला पहला सुरत शब्द साखी मिर सिंगी, बाजे लोक सुने पत चोली मंगण के ताई, भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जाने, गोरख सूजन गोए उठाली करते बार न लागे रहा। पानी प्राण पवन बद राखे चंद सुर मुख दिए, मरण जीवन को धरती देनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक अरजोगी जंगम पीर पुरुष बहुतेरे, जिन तिन मिला तकी रखिया खां ता मन सेव करे। जे तिन मिला तकी रतिया खां ता मन सेव करे। कागज लून रहे कृग संगे पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम करी मैला पहला सुन मछंदरा नानक बोले, वस्कत पंच करे न डोले। ऐसी जुगत जो को पाले आप तरे सगले कुल तारे, सोआ दूत ऐसी मत पावे एन सुन समाध समावे रहा। वेख्या पाए भगत पै चले होवे सो तिप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन मछंदरा औदू निशानी, आसा माहे निराश बुलाए निश्चो नानक करते पाए। परमृत नानक गम सुनाए गुरचेले की संद मिलाए, देखिया दारू भोजन काए शे दर्शन की सोजी पाए। राम करी मैला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाए, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो दे वड्याई। गुरतार तारण हारिया दे भगत पूर्ण अविनाशी, हो तुझको बलिहारिया राव। सिद्ध साधु जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसद पैर संचिते स्वामी अखर जिनको आया। जब तक संयम कर्म न जाना नाम जप प्रभ तेरा, कर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नवेरा। राम की मैला पहला सुरते सुरत रलाइए एत, तन कर तुरह लंगे जेत। अंतर पाए किसे तिसे तू रख, ऐ नस दीवा बले अथक ऐसा दीवा।

परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। ब्रह्म ज्ञानी क्या सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।

कैसे गवे। आपस को जो भला कहवे तिसे भला ही निकट न आवे। सर्व की रेंजा का मन होए कौन नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए।

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार्य कश न दृष्टिता पापम तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध के संकमाद। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होत परम। अपन खेला वर्तीजा नान करने हार न दूजा, जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गने। जब एक कहे हरक में अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कह हो कत ठाए। जब अपह आप अपनी जोत तरह तब कौन निरार कौन कत डरह। अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अग में पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कह हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त कछ पूछ लेखा। जब नाथ निरंजना गोचर गादे तब कौन छुटे।

जब अपन आप उतार है तो सगन आप सगन कहाँ विचार है, जय अपन ऊंच अपने आप निरात है, कौन उठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मना बिस्मर है बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जहाँ शल अशेद या पेश माया वहाँ से व्याप्त माया, आप उसको आपे आदेश, तेह गुण का ना ही प्रवेश, जहाँ एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपन आप पतियारा, तह कौन कथा कौन सुन रहे हारा, बो बेअंत उच्चे उच्चा, नानक आप उसको आप पहुँचा, जय आप रचियो प्रपंच अकार, तेह गुण मैं कीनो विस्तार, पाप पुन तह पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपख्यान, अपन खेल आप कर देखा है, खेल संकोचा है तो नानक एक है, जय अवगित भगत तह आप, जय पसरे पासार संत प्रताप, दूह पा काया पे तनी उनकी शोभा नूं बनी, आप है कौल करे अनचोज, आपे रस भोगन निर्जोग, जिस पावे तसी आप

देहि मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाय अचरज बिस्माद तिन देखया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बह संतर माहे चार कुंठ दल से समाये तिस्ते पिन नहीं कुठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आपे डोल न कब हूं डोले सर्ब कला कर खिले खेल मूल न पाइए गुणे अमोल सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नारक तन में हो विश्वास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता जिसकी यह रैत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान है कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगरी उत्पाता।

त्यागो त्रंग संत जना की तूर मर मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरह हर तन के पर लेहो पंडहार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पीवो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कुमावत होत उधार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर लंग रंग जय जय शब्द अनाह दवाजय सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरे उदरे तिन के साथ है नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम राम सुन रसना कहते कर प्रसाद प्रभ धारी नानक बिही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसै सो होत निधान सर्विशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब तूच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जसह प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।